गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम और आदाब टू ऑल आवर वंडरफुल लिसनर्स ट्यूनिंग इन टू WVKR 91.3 FM, एन इंडिपेंडेंट रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम वैसर कॉलेज, पिकिप्सी, न्यूयॉर्क. यू आर लिसनिंग टू गीत माला, योर फेवरेट शो ब्रिंगिंग सुर संगीत एंड टाइमलेस मेलोडीज टू ब्राइटन योर डे. आप सुन रहे हैं गीतमाला, जहां पुरानी यादों के नगमे और नए जमाने के सुर मिलते हैं. यू कैन लिसन टू अस ऑनलाइन एट wvkr.org और थ्रू द ट्यून इन ऐप बाई सर्चिंग फॉर WVKR गीतमाला. फॉर सॉन्ग रिक्वेस्ट और कॉमेंट्स, फील फ्री टू कॉल अस एट 845-437-7178. हमें आपके कॉल्स का हमेशा इंतजार रहेगा. आई एम योर होस्ट प्रीता, हियर टू ब्रिंग यू सोलफुल सॉन्ग्स एंड एंगेजिंग कॉन्वर्सेशंस टू मेक योर मॉर्निंग ट्रूली स्पेशल.

दोस्तों, सबसे पहले तो शुक्रिया सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी विल मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

चलिए दोस्तों, अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है. आई होप यू एंजॉयड लिसनिंग टू द सॉन्ग्स एज मच एज आई लव प्लेइंग देम फॉर यू. हैव अ वंडरफुल वीकेंड अहेड. स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए. साइनिंग ऑफ योर होस्ट प्रीता.